0: This is Talk 100.3.
1: Kabhi mere dil mein khayal aata hai ki zindagi teri zulfon ki narm chhaon mein guzarne paati to shadaab ho bhi sakti thi. Ye ranj o gham ki siyahi jo dil pe chhai hai teri nazar ki shuaon mein kho bhi sakti thi. Magar ye ho na saka. Magar ye ho na saka aur ab ye alam hai कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर मैं जानता हूं मेरी हम नफस मगर यूं ही कभी

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

0: कोई मॉडल पूरा ना लगता है।
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है।
2: Talk 100.3 Talk Music brought to you

0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे।
1: क्यों नहीं,
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: This is Talk 100.3.
1: आग कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें। कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम, कौन हो तुम?

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।
1: This is Talk 100.3.